मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज बहुत पावन दिन पर मुझे आपसे मन की बात करने का अवसर मिला है। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज से भारतीय नववर्ष का भी आरंभ हो रहा है। इस बार विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है। इस समय मेरे सामने आपकी ढेर सारी चिट्ठियां रखी हुई है। कोई बिहार से है, कोई बंगाल से, कोई तमिलनाडु से है, कोई गुजरात से है। इनमें बड़े रोचक तरीके से लोगों ने अपने मन की बातें लिखकर भेजी है। कई सारी चिट्ठियों में शुभकामनाएं भी हैं, बधाई संदेश भी हैं, लेकिन आज मेरा मन करता है कुछ संदेशों को आपको सुनाऊं। सर्वारिगु युगादि हबद सुभाषय गडू। अगला संदेश है अंदरी की उगादि शुभाकांक्षलु। अब एक और चिट्ठी में लिखा है संवसार पाड़व्यार्ची परबी। अगले संदेश में लिखा गया है गुड़ी पाड़व्या निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। हमारे एक साथी ने लिखा है एल्लावरक्कुम विशु आशम शगल। एक और संदेश है इनिये पुथांडु नल्लवाल थुक्कल। साथियों, आप ये तो समझ गए होंगे कि अलग अलग भाषाओं में भेजे गए संदेश हैं, लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं? यही तो वो खास बात है जो आज मुझे आपसे साझा करनी है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में आज और अगले कुछ दिनों में नववर्ष शुरू हो रहे हैं और ये सभी संदेश नववर्ष और विभिन्न पर्वों की बधाइयों के हैं। इसलिए मुझे अलग अलग भाषाओं में लोगों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। साथियों, आज कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में उगादि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ही महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। विविधता भरे हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अगले कुछ दिन में असम में रंगाली बिहू, बंगाल में पोइला बैशाख, कश्मीर में नवरेह का उत्सव मनाया जाएगा। इसी तरह 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की जबरदस्त धूम दिखेगी। इसे लेकर भी उत्साह का माहौल है और ईद का त्योहार तो आ ही रहा है, यानी ये पूरा महीना त्योहारों का है, पर्वों का है। मैं देश के लोगों को इन त्योहारों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे ये त्योहार भले ही अलग अलग क्षेत्रों में हो, लेकिन ये दिखाते हैं कि भारत की विविधता में भी कैसे एकता पिरोई हुई है। इस एकता की भावना को हमें निरंतर मजबूत करते चलना है। साथियों, जब परीक्षाएं आती हैं तो युवा साथियों के साथ मैं परीक्षा पे चर्चा करता हूं। अब परीक्षाएं हो चुकी हैं, बहुत सारे स्कूलों में तो दोबारा क्लास शुरू होने की तैयारी हो रही है। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों का समय भी आने वाला है। साल के इस समय का बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैं और मेरे दोस्त दिन भर कुछ ना कुछ उत्पात मचाते रहते थे, लेकिन साथ ही हम कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करते थे, सीखते भी थे। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, इसमें बच्चों के पास करने को बहुत कुछ होता है। यह समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कोई संस्था
टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहां ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। अगर कहीं पर्यावरण की बात हो, थिएटर की बात हो या लीडरशिप की बात हो, ऐसे विविध विविध विषय के कोर्स होते रहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जो स्पीच या तो ड्रामा सिखाते हैं, ये बच्चों को बहुत काम आते हैं। इन सब के अलावा आपके पास इन छुट्टियों में कई जगह चल रहे वॉलेंटियर एक्टिविटीज, सेवा कार्यों से भी जुड़ने का अवसर है। ऐसे कार्यक्रमों को लेकर मेरा एक विशेष आग्रह है, अगर कोई संगठन, कोई स्कूल या सामाजिक संस्थाएं या तो फिर साइंस सेंटर ऐसी समर एक्टिविटीज करवा रहे हो तो इसे हैशटैग माय हॉलीडेज के साथ जरूर शेयर करें। इससे देश भर के बच्चे और उनके माता पिता को इनके बारे में आसानी से जानकारी मिल सकेगी। मेरे युवा साथियों, मैं आज आपसे माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसे इस समर वैकेशन के लिए तैयार किया गया है। इस कैलेंडर की एक कॉपी अभी मेरे सामने रखी हुई है। मैं इस कैलेंडर से कुछ अनूठे प्रयासों को साझा करना चाहता हूं, जैसे माय भारत के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहां कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। वहीं अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा में भागीदारी कर आप संविधान के मूल्यों को लेकर जागरूकता भी फैला सकते हैं। बच्चों और उनके माता पिता से भी मेरा विशेष आग्रह है कि वे छुट्टियों के अनुभवों को हैशटैग हॉलीडे मेमोरीज के साथ जरूर साझा करें। मैं आपके अनुभवों को आगे आने वाली मन की बात में शामिल करने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर शहर, गांव गांव पानी बचाने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। अनेक राज्यों में वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़े कामों ने, जल संरक्षण से जुड़े कामों ने नई तेजी पकड़ी है। जल शक्ति मंत्रालय और अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सॉकपिट का निर्माण हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। ये अभियान भी सरकार का नहीं बल्कि समाज का है, जनता जनार्दन का है। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इस अभियान के तहत देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा देता हूं। पिछले 7-8 साल में नए बने टैंक, पॉन्ड और अन्य वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर से 11 बिलियन क्यूबिक मीटर, उससे भी ज्यादा पानी का संरक्षण हुआ है। अब आप सोचेंगे कि 11 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी कितना पानी होता है। साथियों, भाखड़ा नांगल बांध में जो पानी जमा होता है उसकी तस्वीरें तो आपने जरूर देखी होगी। ये पानी गोविंद सागर झील का निर्माण करता है।
इस झील की लंबाई ही 90 किलोमीटर से ज्यादा है। इस झील में भी 9-10 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी संरक्षित नहीं हो सकता है, सिर्फ 9-10 बिलियन क्यूबिक मीटर। और देशवासियों ने अपने छोटे छोटे प्रयास से देश के अलग अलग हिस्सों में 11 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी के संरक्षण का इंतजाम कर दिया है। है ना ये शानदार प्रयास। साथियों, इस दिशा में कर्नाटका के गडक जिले के लोगों ने भी मिसाल कायम की है। कुछ साल पहले यहाँ के 2 गांवों की झीलें पूरी तरह सूख गई। एक समय ऐसा भी आया जब वहां पशुओं के पीने के लिए भी पानी नहीं बचा। धीरे धीरे झील घास फूस और झाड़ियों से भर गई, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने झील को पुनर्जीवित करने का फैसला किया और काम में जुट गए। और कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। गांव के लोगों के प्रयास देखकर आसपास की सामाजिक संस्थाएं भी उनसे जुड़ गई। सब लोगों ने मिलकर कचरा और कीचड़ साफ किया और कुछ समय बाद झील वाली जगह बिल्कुल साफ हो गई। अब लोगों को इंतजार है बारिश के मौसम का। वाकई ये कैच द रेन अभियान का शानदार उदाहरण है। साथियों, आप भी सामुदायिक स्तर पर ऐसे प्रयासों से जुड़ सकते हैं। इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप अभी से योजना जरूर बनाइए। और आपको एक और बात याद रखनी है, हो सके तो गर्मियों में अपने घर के आगे मटके में ठंडा जल जरूर रखिए। घर की छत पर या बरामदे में भी पक्षियों के लिए पानी रखिए। देखिएगा, ये पुण्य कार्य करके आपको कितना अच्छा लगेगा। साथियों, मन की बात में अब बात हौसलों के उड़ान की, चुनौतियों के बावजूद जज्बा दिखाने की। कुछ ही दिन पहले संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में एक बार फिर खिलाड़ियों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना पॉपुलर हो रहा है। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। इस बार के खेलो इंडिया पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले आर्म रेस्लर जॉबी मैथ्यू ने मुझे चिट्ठी लिखी है। मैं उनके पत्र के कुछ हिस्से को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, मेडल जीतना बहुत खास होता है, लेकिन हमारा संघर्ष सिर्फ पोडियम पर खड़े होने तक सीमित नहीं है। हम हर रोज एक लड़ाई लड़ते हैं। जीवन कई तरीके से हमारी परीक्षा लेता है। बहुत कम लोग हमारे संघर्ष को समझ पाते हैं। इसके बावजूद हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने में जुटते हैं। हमें ये विश्वास रहता है कि हम किसी से कम नहीं है। वाह, जॉबी मैथ्यू, आपने कमाल लिखा है, अद्भुत लिखा है। इस पत्र के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं जॉबी मैथ्यू और हमारे सभी दिव्यांग साथियों से कहना चाहता हूं कि आपके प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, दिल्ली में एक और भव्य आयोजन ने लोगों को बहुत प्रेरणा दी है, जोश से भर दिया है। एक इनोवेटिव आइडिया के रूप में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के करीब
25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इन सभी का एक ही लक्ष्य था, फिट रहना और फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। इस आयोजन में शामिल लोगों को उनके स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण से जुड़ी जानकारियां भी मिली। मेरा आग्रह है कि आप अपने क्षेत्रों में भी इसी तरह के कार्निवल का आयोजन करें। इस पहल में माय भारत आपके लिए बहुत मददगार बन सकता है। साथियों, हमारे स्वदेशी खेल अब पॉपुलर कल्चर के रूप में घुल मिल रहे हैं। मशहूर रैपर हनुमान काइंड को तो आप सभी जानते ही होंगे। आजकल उनका नया सॉन्ग रन इट अप काफी फेमस हो रहा है। इसमें कलारियापट्टू, गतका और थांगता जैसी हमारी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स को शामिल किया गया है। मैं हनुमान काइंड को बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से हमारी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स के बारे में दुनिया के लोग जान पा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हर महीने मुझे MyGov और नमो ऐप पर आपके ढेरों संदेश मिलते हैं। कई संदेश मेरे मन को छू लेते हैं, तो कुछ गर्व से भर देते हैं, कई बार तो इन संदेशों में हमारी संस्कृति और परंपराओं के बारे में अनोखी जानकारी मिलती है। इस बार जिस संदेश ने मेरा ध्यान खींचा, उसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। वाराणसी के अथर्व कपूर, मुंबई के आर्यश लिखा और अत्रेय मान ने मेरी हाल की मॉरिशस यात्रा पर अपनी भावनाएं लिखकर भेजी है। उन्होंने लिखा है, इस यात्रा के दौरान गीत गवई की परफॉर्मेंस से उन्हें बहुत आनंद आया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए बहुत सारे पत्रों में मुझे ऐसी ही भावुकता देखने को मिली है। मॉरिशस में गीत गवई की शानदार परफॉर्मेंस के दौरान मैंने वहां जो महसूस किया, वो वाकई अद्भुत है। साथियों, जब हम जड़ से जुड़े रहते हैं तो कितना ही बड़ा तूफान आए, तूफान हमें उखाड़ नहीं पाता। आप कल्पना करिए, करीब 200 साल पहले भारत से कई लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस गए थे। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन समय के साथ वे वहां रसबस गए। मॉरिशस में उन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। उन्होंने अपनी विरासत को सहज कर रखा और जड़ों से जुड़े रहे। मॉरिशस ऐसा अकेला उदाहरण नहीं है। पिछले साल जब मैं गयाना गया था,

आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे देश के किसी हिस्से की बात है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसका संबंध फिजी से है। यह फिजी का बहुत ही लोकप्रिय फगवा चौताल है। ये गीत और संगीत हर किसी में जोश भर देता है। मैं आपको एक और ऑडियो सुनाता हूं।

ये ऑडियो सूरीनाम का चौताल है। इस कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे देशवासी, सूरीनाम के राष्ट्रपति और मेरे मित्र चान संतोखी जी को इसका आनंद लेते हुए देख सकते हैं। बैठक और गानों की यह परंपरा त्रिनिदाद एंड टोबेगो में भी खूब लोकप्रिय है। इन सभी देशों में लोग रामायण खूब पढ़ते हैं। यहाँ फगवा बहुत लोकप्रिय है और सभी भारतीय पर्व त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। उनके कई गाने भोजपुरी, अवधी या मिश्रित भाषा में होते हैं। कभी कभार ब्रज और मैथिली का भी उपयोग होता है। इन देशों में हमारी परंपराओं को सहेजने वाले सभी लोग सराहना के पात्र हैं। साथियों, दुनिया में ऐसे कई संगठन भी हैं जो वर्षों से भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन है सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी। भारतीय नृत्य, संगीत और संस्कृति को संरक्षित करने में जुटे इस संगठन ने अपने गौरवशाली 75 साल पूरे किए हैं। इस अवसर से जुड़े कार्यक्रम में सिंगापुर के राष्ट्रपति श्रीमान थर्मन सन्मुगरत्नम जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों की खूब सराहना की। मैं इस टीम को अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मन की बात में हम देशवासियों की उपलब्धियों के साथ ही अक्सर सामाजिक विषयों को भी उठाते हैं। कई बार चुनौतियों पर भी चर्चा होती है। इस बार मन की बात में मैं एक ऐसी चुनौती के बारे में बात करना चाहता हूं जो सीधे हम सब से जुड़ी हुई है। ये चुनौती है टेक्सटाइल वेस्ट की। आप सोच रहे होंगे ये टेक्सटाइल वेस्ट क्या नई बला आखड़ी हुई है। दरअसल टेक्सटाइल वेस्ट पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। आजकल दुनिया भर में पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द हटाकर नए कपड़े लेने का चलन बढ़ रहा है। क्या आपने सोचा है कि जो पुराने कपड़े आप पहनना छोड़ देते हैं उनका क्या होता है? यही टेक्सटाइल वेस्ट बन जाता है। इस विषय में बहुत सारी ग्लोबल रिसर्च हो रही है। एक रिसर्च में ये सामने आया है सिर्फ 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकिल किया जाता है। 1% से भी कम। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। यानी चुनौती हमारे सामने भी बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे देश में इस चुनौती से निपटने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। कई ऐसी टीमें हैं जो कचरा बीनने वाले हमारे भाई बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। कई युवा साथी सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों में जुड़े हैं। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से सजावट की चीजें, हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कई संस्थाएं आजकल सर्कुलर फैशन ब्रांड को पॉपुलर बनाने में जुटी हैं। नए नए रेंटल प्लेटफॉर्म भी खुल रहे हैं जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती है। साथियों, टेक्सटाइल वेस्ट से निपटने में कुछ शहर भी अपनी नई पहचान बना रहे हैं। हरियाणा का पानीपत टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। बेंगलुरु भी इनोवेटिव टेक्स सॉल्यूशंस से अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। यहां आधे से ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट को जमा किया जाता है, जो हमारे दूसरे शहरों के लिए भी एक मिसाल है। इसी प्रकार तमिलनाडु का तिरुपुर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट
और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से टेक्सटाइल वेस्ट मैनेजमेंट में जुटा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज फिटनेस के साथ साथ काउंट का बड़ा रोल हो गया है। एक दिन में कितने स्टेप्स चले इसका काउंट, एक दिन में कितनी कैलोरीज खाई इसका काउंट, कितनी कैलोरीज बर्न की इसका काउंट, इतने सारे काउंट्स के बीच एक और काउंटडाउन शुरू होने वाला है, इंटरनेशनल योगा डे का काउंटडाउन। योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। अगर आपने अपने जीवन में अब तक योगा को शामिल नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, अभी देर नहीं हुई है। 10 साल पहले 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब तो इस दिन ने योग के एक विराट महोत्सव का रूप ले लिया है। मानवता को भारत की ओर से यह एक ऐसा अनमोल उपहार है जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाला है। साल 2025 के योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं। साथियों, यह हम सबके लिए गर्व करने वाली बात है कि आज हमारे योग और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर पूरी दुनिया में जिज्ञासा बढ़ रही है। बड़ी संख्या में युवा योग और आयुर्वेद को वेलनेस का एक बेहतरीन माध्यम मानकर इसे अपना रहे हैं। अब जैसे साउथ अमेरिका का देश चिली है, वहां आयुर्वेद तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पिछले साल मैं ब्राजील की यात्रा के दौरान चिली के राष्ट्रपति से मिला था। आयुर्वेद की इस पॉपुलैरिटी को लेकर हमारे बीच काफी चर्चा हुई थी। मुझे सोमोस इंडिया नाम की टीम के बारे में पता चला है। स्पेनिश में इसका अर्थ है वी आर इंडिया। यह टीम करीब एक दशक से योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने में जुटी है। उनका फोकस ट्रीटमेंट के साथ साथ एजुकेशनल प्रोग्राम्स पर भी है। वे आयुर्वेद और योग से संबंधित जानकारियों को स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करवा रहे हैं। सिर्फ पिछले वर्ष की बात करें तो उनके अलग अलग इवेंट्स और कोर्सेज में करीब 9000 लोगों ने हिस्सा लिया था। मैं इस टीम से जुड़े सभी लोगों को उनके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब एक चटपटा सा और अटपटा सा सवाल। आपने कभी फूलों की यात्रा के बारे में सोचा है? पेड़ पौधों से निकले कुछ फूलों की यात्रा मंदिरों तक होती है। कुछ फूल घर को सुंदर बनाते हैं, कुछ इत्र में घुलकर हर तरफ खुशबू फैलाते हैं। लेकिन आज मैं आपको फूलों की एक और यात्रा के बारे में बताऊंगा। आपने महुआ के फूलों के बारे में जरूर सुना होगा। हमारे गांवों और खास करके आदिवासी समुदाय के लोग इसके महत्व के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। देश के कई हिस्सों में महुआ के फूलों की यात्रा अब एक नए रास्ते पर निकल पड़ी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूल से कुकीज बनाए जा रहे हैं। राजा को गांव की चार बहनों के प्रयास से ये कुकीज बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन महिलाओं का जज्बा देकर एक बड़ी कंपनी ने इन्हें फैक्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग दी। इनसे प्रेरित होकर गांव की कई महिलाएं इनके साथ जुड़ गई है। इनके बनाए महुआ कुकीज की मांग तेजी से बढ़ रही है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में भी दो बहनों ने महुआ के फूलों से नया एक्सपेरिमेंट किया है। वो इनसे तरह तरह के पकवान बनाती हैं, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। उनके पकवानों में आदिवासी संस्कृति की मिठास भी है। साथियों, मैं आपको एक और शानदार फूल के बारे में बताना चाहता हूं और इसका नाम है कृष्ण कमल। क्या आप गुजरात के एकता नगर में
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने गए हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास आपको ये कृष्ण कमल बड़ी संख्या में दिखेंगे। ये फूल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। ये कृष्ण कमल एकता नगर के आरोग्य वन, एकता नर्सरी, विश्व वन और मियावाकी फॉरेस्ट में आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। यहां योजनाबद्ध तरीके से लाखों की संख्या में कृष्ण कमल के पौधे लगाए गए हैं। आप भी अपने आसपास देखेंगे तो आपको फूलों की दिलचस्प यात्राएं दिखेगी। आप अपने क्षेत्र में फूलों की ऐसी अनोखी यात्रा के बारे में मुझे भी लिखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे हमेशा की तरह अपने विचार, अनुभव और जानकारियां साझा करते रहे। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा हो जो सामान्य लगे, लेकिन दूसरों के लिए वो विषय बहुत रोचक और नया होगा। अगले महीने हम फिर मिलेंगे और देशवासियों की उन बातों की चर्चा करेंगे जो हमें प्रेरणा से भर देती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि ये काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर। नमस्ते
0: भाई, मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
1: धन्यवाद सर, आपसे बात करके मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
1: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम, उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, तारकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसकी वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली, एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया, बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
0: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
1: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो, तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास सीख एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
0: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
1: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी है सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
0: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे। इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता, इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी, बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने, उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोड़ाई कनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।